बढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: नाजिया हसन फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ द लॉस्ट बैंक हॉलिडे। डू यू रिमेम्बर वी डिड अ लिटिल क्विज, डिड वी? वाज इट द लॉस्ट बैंक हॉलिडे और वाज इट द बैंक हॉलिडे बिफोर दैट? एनीवे, ऑन सम बैंक हॉलिडे व्हेन आई डिड अ क्विज एंड आई आस्क्ड यू अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दिस गॉर्जियस गर्ल इमर्ज्ड एज द यंगेस्ट विनर ऑफ द बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगिंग फिल्म फेयर अवार्ड एट द एज ऑफ स्वीट 16, नाजिया हसन। दिस मंडे इज ऑल्सो अ बैंक हॉलीडे। वॉट शुड वी डू ऑन बैंक हॉलीडे? एनी सजेशंस? शुड वी गो विद अ पर्टिकुलर डेकेड? शुड आई मेक इट ऑल रिक्वेस्ट? शुड आई हैव अ क्विज? Something easy, please. Let me know.
1: Listener's choice brought to you by Colors TV.
0: Seher Beg dares to dream beyond limits, but destiny ties her to Mahid Niazi, a man she never chose. In a world of rules, control, and judgment, will her dream survive? Watch Seher Hone Ko Hai Monday to Friday, 9:25 PM, only on Colors TV. The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Right now we're heading straight to Tuscany, lekin ghabraiye mat. We'll be back in London for the weekend when we have been promised a heatwave, right? We shall see. War 2 on Sunrise.

0: टेकन फ्रॉम द फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान अनुष्का की फिल्म। वॉज दिस अनुष्का डेब्यू और वॉज इट बैंड बाजा बारात? मुझे याद नहीं आ रहा, बताएगा कोई मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे। रूप कुमार राठौड़ ऑन द वोकल्स। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज वेंसडे द 20th ऑफ मे, मिनी इन न्यूकासल की बर्थडे की सुबह शबनम साही के साथ।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक।
0: अ ड्रीम वेटिंग टू बी रिवाइव्ड। वॉच डॉक्टर आरंभी मंडे टू फ्राइडे 7 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. I could leave out this song on any day but today. Pati Patni aur wo do, Tanishq Bagchi, Guru Randhawa here and Indivar. Kali teri choti te paranda tera Arsenal wala lal. That's what it is today. Of course, we've got a competition on the show as well. कहीं मत जाइएगा। Good morning.

0: गए।
1: जगह नहीं और डायरी में, ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, भरी हुई है जले बुझे अधकाए ख्यालों की राखबू से, ख्याल पूरी तरह से जो कि जले नहीं थे।

0: Nagoria on Sunrise. So Sheetal in Ilford, Galbanay, Northampton, Olga Sinfairdown, Ali in Toronto, also getting it right. So shall we have a listen to this trio then? Today we had Bhumi Bednekar, we had Ayushman Khurana and Yami Gautam.
1: TikTok पे मिले तो है इतनी बार, आपके साथ आधी स्क्रीन शेयर करने की गुस्ताखी काफी बार की है हमने।
2: आप हमारे साथ जो वीडियो किए थे ना, उससे बहुत लाइक्स मिले थे वैसे हमें।
1: बहुत पुराना नाता है हमारा।
2: अच्छा, तो आप प्रीटी हो की मार्केटिंग में है।
0: Well done, if you got it right, well done. All right, got your hidden gem on the way for you. I'll have a competition for you later on in the show as well. It's Sonia on Drive. Stay with me.

0: Alicia Chenar.
1: मैं सद के जावा,
0: मैं सद के जावा,
1: इट्स रॉकिंग यार,
0: इश्क पे यारा, मैं सद के जावा,
1: क्या लव स्टोरी है।

0: Now tell me.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड, कैंटन रोड, और 66 मोनार्क परेड, लंदन रोड, मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
2: Pepe Spiri Piri presents the icon and living legend Sonu Nigam live in concert. The Revolution Tour comes to London on the 23rd of August at the OVO Arena, Wembley. Get your tickets now to see Sonu for one show only in the UK. Tickets available from AXS and Ticketmaster. Powered by RGB in association with Berico Food Distribution Limited and Dairy Valley. Come see Sonu Nigam live, brought to you by Rock On Music. It's a TCO production. Catering partner Madhus, hospitality partner The Taj Group, radio partner Sunrise Radio.
3: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favorite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations, and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.

किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: available at all Quality Food outlets and other leading ethnic outlets across the UK.
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।
4: Advertise on the UK's number one commercial Asian radio station. Call the Sunrise Radio sales team today on 020 8574 7777. This is Sunrise, the UK's biggest